0: FM Dunedin. Access to the airwaves.
1: Assalamu alaikum and kia ora Dunedin.
2: You are tuned into Chit Chat with Pav, brought to you by the Pakistani Association of Otago.
1: This is your space for culture, stories and good conversation, straight from our community to yours.
3: Assalamu alaikum, kia ora aur bahut bahut khush aamdeed Chit Chat with Pakistan mein. सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको पाकिस्तान के योम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद चाहे आप पाकिस्तान में हैं न्यूजीलैंड में हैं ऑस्ट्रेलिया में हैं बरतानिया में हैं मिडल ईस्ट में हैं कनाडा में या दुनिया के किसी भी कोने में हैं 14 अगस्त हम सब के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं है ये एक एहसास है सब्ज और सफ़ेद परचम मिली नगमे बचपन की स्कूल असम्बलीज झंडियाँ बैचेस चांद सितारे घरों की छतों पे परचम लहराना टीवी पर स्पेशल ट्रांसमिशंस देखना और दिल में वो अजीब सी फीलिंग के हाँ ये हमारा मुल्क है ये हमारी कहानी का हिस्सा है तो आज की एपिसोड एक बहुत ही खास इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एपिसोड है आज हम पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे लेकिन सिर्फ टेक्स्ट बुक वाली बात नहीं करेंगे हम पाकिस्तान की खूबसूरती लोगों जुबानों खानों कल्चर मेमोरीज और ओवरसीज पाकिस्तानियों की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे ख़ास तौर पे न्यूजीलैंड में रहने वाले पाकिस्तानियों की ज़िंदगी के बारे में क्योंकि हम में से बहुत से लोग फिज़िकली पाकिस्तान से दूर हैं लेकिन इमोशनली पाकिस्तान हमारे साथ ही रहता है कभी ज़ुबान में कभी खाने में कभी क्रिकेट में कभी ईद के कपड़ों में कभी अम्मी या अबू की व्हाट्सएप कॉल में कभी किसी पाकिस्तानी को सुपरमार्केट में देखकर अचानक दिल खुश हो जाने में और कभी कभी एक नेशनल सॉन्ग सुनकर अचानक आपकी आंख नम हो जाने में तो आज की गुफ्तगू में हम सेलिब्रेट भी करेंगे हम रिफ्लेक्ट भी करेंगे थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया भी है और थोड़ी सी ऑनेस्टी भी और इंशाल्लाह थोड़ा सा फन भी तो चाय बना लें कॉफ़ी ले आएँ या अगर आप प्रॉपर पाकिस्तानी मूड में है तो दूध पत्ती के साथ बैठ जाए क्योंकि आज हम दिल से बात करेंगे जब आप पाकिस्तान से दूर हों तो 14 अगस्त हमें कैसा लगता है वेल पाकिस्तान में 14 अगस्त का माहौल बहुत ही डिफरेंट होता है बाजारों में आप देखते हैं कि बहुत सारे झंडे हैं बच्चों के लिए वाइट और ग्रीन कपड़े अवेलेबल होते हैं

गाड़ियों पर लोगों ने झंडियां लगाई होती हैं, घरों में हम नेशनल सॉन्ग सुनते हैं. मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो हमारा घर क्योंकि काफी बड़ा हमारा गार्डन था, तो उसमें हम बहुत देर लगा के और अच्छी खासी, तब अभी भी खैर गर्मी होती है, न्यूजीलैंड में गर्मी नहीं होती, पाकिस्तान में तो अभी भी गर्मी होती है अगस्त में, तो बहुत गर्मी में बहुत टाइम लगा के हम वो दोनों बहन भाई झंडियां लगाया करते थे एक कोने से लेके दूसरे कोने तक. तो वो मुझे अभी भी याद है कि वो मेरा बड़ा फेवरेट टाइम हुआ करता था कि हमने 14 अगस्त, जब अगस्त शुरू हो जाना तो हमने चले जाना और अम्मी के साथ जाना और झंडियां लेके आनी और छोटे छोटे वो बैजेस जो आप कपड़ों पर लगाते हैं वो लेके आने, बड़ा वाला फ्लैग लेके आना ताकि हम घर पर भी फ्लैग लगा सकें. तो वो एक पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 14 अगस्त बहुत ही फेस्टिव फीलिंग आपको वहाँ पे आती है, लेकिन जब हम न्यूजीलैंड में हैं तो 14 अगस्त का एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट है. यहाँ दिस इज जस्ट लाइक अनदर डे, आपका ऑफिस भी होता है, आपको स्कूल भी जाना होता है, आपकी अपॉइंटमेंट्स भी वैसे ही होती हैं, आपको ग्रोसरी रन्स भी करने होते हैं और बच्चों को पिकअप करना है, मतलब कि आपकी लाइफ कम्प्लीटली नॉर्मल होती है. यहाँ के लिए इट्स नॉट अ स्पेशल डे, लेकिन सुबह जब आप व्हाट्सएप खोलते हैं तो आपको मैसेजेस आने शुरू होते हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तान जिंदाबाद. आप अपना इंस्टाग्राम खोलते हो तो यू जस्ट लुक एट द पोस्ट्स दैट पीपल आर मेकिंग, जश्न आज़ादी मुबारक, दिल दिल पाकिस्तान. और हमेशा मैं तो वो, मुझे तो नज़में बड़ी अच्छी लगती हैं जो फैज़ अहमद फैज़ की नज़में लोग शेयर करते हैं फेसबुक वगैरह पे, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे, तो मेरा तो दिल खुश हो जाता है वो पढ़ के और देख के. और तब आपको लगता है, एक फीलिंग आती है कि हम दूर हैं लेकिन हम डिस्कनेक्टेड नहीं हैं. और ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए इंडिपेंडेंस का जो मतलब है वो और भी ज्यादा डीप हो जाता है, क्योंकि जब आप किसी चीज से दूर रहते हैं तो छोटी छोटी चीजों की जो आपको उनके करीब रहते हुए जो उनकी अहमियत महसूस नहीं होती वो आपको दूर होके बहुत ज़्यादा महसूस होती है. आपका उर्दू बोलना, आपका अपना खाना बनाना, आपका बच्चों को पाकिस्तान के बारे में बताना, या आप इंडिपेंडेंस पे अगर आप इंडिपेंडेंस डे पे अगर आप सिर्फ पाकिस्तानी कपड़े पहनते हो, आप घर में आते हो आप अस्सलाम वालेकुम कहते हो, अल्लाह हाफिज़ कह के बाहर निकलते हो, नेशनल सॉन्ग्स कभी सुनते हो, कभी गाड़ी में नेशनल सॉन्ग सुनते हो. हमारे तो मेरी तो बेटी को अच्छा खासा वो उर्दू भी बोलती है माशाल्लाह, और पहले पंजाबी भी बोला करती थी, अब उसने छोड़ दी पंजाबी बोलनी, लेकिन वो जब दिल दिल पाकिस्तान गाती थी तो इट यूज टू मेक मी रियली हैप्पी. अब मेरा बेटा है, आई एम ट्राइंग फॉर हिम टू लर्न द दिल दिल पाकिस्तान सॉन्ग, बट इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट बिकॉज उसकी वो प्रोनाउंसिएशन ही नहीं है उर्दू वाली और पंजाबी वाली. तो इन सारी चीज़ों में हमारी जो वो फीलिंग है ऑफ हैविंग अ फीलिंग ऑफ अ होमलैंड, वो हम फिर भी अलाइव रखते हैं. और ये मुझे याद है जब हम पाकिस्तान में थे तो हम कभी कभार स्पेशल जब जैसे 14 अगस्त की छुट्टियां होती थी तो पापा हमें लेके जाया करते थे लाहौर, तो हमने जू या फिर वहाँ पे जो डिफरेंट जगह हैं लाहौर में वहाँ पे हम जाया करते थे घूमने के लिए. तो वो हमारा एक फैमिली का थोड़ा सा टाइम होता था जिसको हम सेलिब्रेट करते थे, जस्ट टुगेदरनेस. तो वो मुझे कभी कभार बहुत याद आता है कि ये सारी चीज़ें जो कि तब आपको जिनकी अहमियत नहीं होती थी, अब वो जब सिर्फ मेमोरीज बन गई हैं और सिर्फ कनेक्शंस बन गई हैं, हमारे मेंटल कनेक्शंस बन गई हैं, तो वो अब ओवरसीज रहने के बाद हम अपने आप से ज़्यादा ये सवाल पूछते हैं कि हम अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी को कैसे जिंदा रखें, हम अपने बच्चों को पाकिस्तान से कैसे कनेक्ट करके रखें, हम अपनी रूट्स को कैसे संभालें, और न्यूजीलैंड में रह कर भी अपनी अच्छी लाइफ बीइंग अ पाकिस्तानी हम कैसे बिल्ड करें, हम अपने बच्चों को ये कैसे बताएं कि वो एक से ज़्यादा कल्चर से बिलोंग कर सकते हैं, दिस इज़ कम्प्लीटली फाइन, दे डोंट हैव टू बी द कीवीज ओनली, दे कैन बी पाकिस्तानी एंड कीवीज एट द सेम टाइम. और ये जो आज के एपिसोड है ये इसी बारे में है. तो पाकिस्तान को कभी कभी लोग एक सिंपल सेंटेंस में अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो आई डोंट थिंक कि दिस इज पॉसिबल एट ऑल. पाकिस्तान सिर्फ एक कंट्री नहीं है, ये एक कहानी भी नहीं है, ये बहुत सारी कहानियों का नाम है. पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया में है. 2023 सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी जो है 240 मिलियन से ज़्यादा है. ज़रा सोचें, 240 मिलियन से ज़्यादा लोग, हर शख्स का अपना घर, अपनी लैंग्वेज, अपनी मेमोरीज, अपने स्ट्रगल्स, अपने ड्रीम्स और अपनी स्टोरी.

Pakistan sirf ek story nahi hai. Pakistan is an amalgamation of multiple millions of stories. Aur Pakistan ki agar hum geography ke bare mein baat karenge to wo bhi bahut diverse hai. North mein aap dekhein buland pahad hai, south mein samandar hai, deserts hai kuch ilakon mein. कुछ इलाके ग्रीन फील्ड से भरे हुए हैं, कुछ जगह है जहाँ पे हिस्टोरिकल सिटीज हैं, कोस्ट लाइन्स हैं, फार्म्स हैं, ऑर्चर्ड्स हैं, फॉरेस्ट्स, वैलीज, रिवर्स, मतलब आप कुछ भी बोले तो हमारे प्यारे मुल्क में वो सारा कुछ है. नॉर्थन एरियाज की अगर आप बात करें तो K2 पाकिस्तान में है, जो दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन माउंटेन है. चित्राल, सवात, गिलगित बल्तिस्तान है, फेरी मेडोज, उंजा, स्कर्दू, ये प्लेसेस सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं है, ये पाकिस्तान की नेचुरल ब्यूटी को एविडेंट करती हैं. और फिर अगर हम अपने सिटीज को देखें, कराची फुल ऑफ एनर्जी, बिजनेस, सी है, फूड, डाइवर्सिटी. लाहौर को देखें तो हिस्ट्री, कल्चर, फूड, लिटरेचर, आर्ट, और वो जो हम मशहूर लाइन बोलते होते हैं लाहौर के बारे में कि लाहौर तो लाहौर ही है. और पंजाबियों के लिए हमारे दिल में वो एक स्पेशल कॉर्नर है लाहौर के लिए. इस्लामाबाद को अगर हम देखें तो ग्रीनरी है, ब्यूटीफुल सिटी. आई थिंक इट हैज़ आल्सो बीन कॉल्ड द सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल इन द वर्ल्ड. और फिर उसमें मागला हिल्स है, और प्लान्ड सिटी लाइफ है, और आपको रिलेटिवली वो जो कामनेस आपको महसूस होती है इस्लामाबाद में, वो भी आप कहीं नहीं है. मैंने अपनी ज़िंदगी के 6 साल इस्लामाबाद में मैं रही हूँ. जब मैं पढ़ती थी यूनिवर्सिटी में, आई यूज़ टू लिव इन अ हॉस्टल इन इस्लामाबाद, एंड इट वाज आई स्टिल, यू नो, दे से दैट इफ़ यू लिव इन इस्लामाबाद वंस, नो अदर सिटी इज़ एवर गुड इनफ, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ट्रू. मैं अभी उसके बाद कितनी जगहों पर रही हूँ. आई हैव लिव्ड इन सऊदी अरेबिया, आई हैव लिव्ड इन ओमान, आई हैव लिव्ड इन, आई हैव बीन टू सो मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड, सो मेनी सिटीज, बट I still cannot find that one place that is as beautiful and as calming and as वो जो आपको होम लाइक फीलिंग आती है ना एज इस्लामाबाद, मुझे मुझे कभी वो सिटी दोबारा नहीं मिला. आई डोंट नो इफ इट वॉज जस्ट द सिटी और इफ इट वॉज ऑल्सो द पीपल दैट लिव्ड इन दैट सिटी विद मी, माई फ्रेंड्स, माई यूनिवर्सिटी लाइफ एंड एवरीथिंग दैट आई एक्सपीरियंस्ड इन इस्लामाबाद. आई डोंट नो, आई मीन इट कुड बी एन मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दोज together that I cannot replace. But honestly speaking, I've never seen another city just like Islamabad again. Or Peshawar ki agar hum baat karte hain to Peshawar history se bhara hua, kaisa khwani kheer hamare mind mein aati hai jab hum Peshawar ke bare mein baat karte hain. Hospitality hamare Peshawari behan bhaiyon ki. Quetta ki baat kare to mountains, dry fruits jo hum Quetta se aate hain, hamare paas unique landscape. मुल्तान है हमारे पास, सिटी ऑफ सेंट्स, मैंगोज, ब्लू पॉटरी. हैदराबाद है जहाँ पे आपको सिंधी कल्चर देखने को मिलता है. बैंगल्स है, लोकल फूड है जिस जो कि अमेजिंग. फैसलाबाद में आप देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी, और बहुत हार्ड वर्किंग पीपल, और फिर वो जो हम झुकते भी याद आती हैं जब फैसलाबाद के बारे में बात करते हैं. तो ये सिर्फ चंद एग्जाम्पल्स हैं. पाकिस्तान के हर शहर, हर कस्बे और हर विलेज की एक अपनी स्टोरी है. और तो अगर हम एज बीइंग ओवरसीज, अगर हम ये बात करें कि पाकिस्तान को हमने यहाँ पे उसके बारे में बात जब हम करते हैं तो इट फील्स लाइक इट्स जस्ट अ रोमांटिक मेमोरी. और पाकिस्तान इट्स नॉट जस्ट just a romantic memory, it's a complex beautiful feeling. It is agar hum isko reality ke lens se dekhte hain to wo warm to hai, lekin at the same time chaotic bhi hai, practical bhi hai, emotional bhi hai, struggle bhi hai usme, aur strong bhi hum hai jab hum pakistani hain. Aur shayad isiliye pakistan hamare dil mein rehta hai kyunki pakistan perfect nahi hai lekin personal hai. To kisi ka pakistan lahore ki galiyon mein hai, आप में से किसी का पाकिस्तान कराची की सी ब्रीज में है, किसी का पाकिस्तान विलेज के फील्ड्स में है. मेरा खुद का पाकिस्तान मेरे विलेज के फील्ड्स में है. आई कैन नॉट गेट ओवर दैट फीलिंग. फॉर एग्जांपल, आई हैव बीन टू पाकिस्तान जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो, एंड द मोमेंट आई लैंडेड बैक इन न्यूजीलैंड आई स्टार्टेड प्लानिंग माई नेक्स्ट ट्रिप. तो अम्मी पापा भी क्योंकि वहाँ पे है, वो भी आपका एक बहुत कनेक्शन है, तो दे स्टार्ट आस्किंग मी, आप अच्छा अभी आप जनवरी में जा रहे हो वापस, तो वापस अब आपने वापस कब आना है. So the moment you land back in New Zealand or any other place in the world, you start planning your trip back to Pakistan. So wo, despite all of the horrible things that we hear in the news, despite all of those things, hamare liye phir bhi Pakistan ek bahut hamara deep connection hai apne country ke saath. So